0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: जय शिव शंभु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कैलाश के निवासी उमापति त्रिनेत्रधारी, जिनके शीश पर चंदा और जटाओं में माँ गंगा शोभायमान हो रही हैं, हम उन अजर अमर अविनाशी जो सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर भी हैं, उन शिव भोलेनाथ की महिमा का बखान करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को समुद्र मंथन के समय कालकूट विष को पीकर किस प्रकार बचाया। तो आइए श्रवण करते हैं कथा में, किंतु उससे पहले मेरे साथ श्रद्धा भाव से बोलिए जय हो भोलेनाथ।

पान कर धुनी रमा कर बैठे थे, नीलकंठ के नाम से विख्यात हुआ। प्रभु आपकी महिमा परम्पार है, प्रभु आप तो बहुत ही दयालु तथा भोले हैं, तभी तो आपके

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: पहलू और गीत का आज का अंक लेकर मैं किरणी फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में।
1: बन्ना रे बागा में झूला डाल्या, बन्ना रे बागा में झूला डाल्या।
0: हिंदुओं के लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। मान्यता है सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। उनको खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन का महीना बारिश का भी होता है और मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा रहता है। गर्मी से राहत के लिए लोग घूमने का आनंद लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं।

0: सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: और ये किसानों के लिए भी प्रिय महीना माना जाता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है। किसानों को भी फसल के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बारिश से धरती मानो स्वर्ग सी लगती है और सुंदर दिखाई देती है।

सावन का महीना खुद में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। सावन का ये महीना मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए खुशहाल मौसम लेकर आता है। आज शाम जब बरसा सावन भीगा अपना तन मन सारा,

सावन के महीने में महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। उनमें से रक्षाबंधन और हरियाली तीज मुख्य त्योहार है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आप सबके लिए तीज के अवसर पर ये प्यारा सा गीत।

तीज का त्योहार हो और मेहंदी ना हो। मेहंदी के बिना तीज का त्योहार या सावन अधूरा है। तीज के दिन मेहंदी लगाने का भी एक विशेष महत्व है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है हरा रंग, जो मेहंदी का रंग है, कई रोगों के रोकथाम में भी कारगर होता है।

तीज के दिन महिलाएं हरी चूड़ियां हरे रंग का पोशाक पहनकर झूला भी झूलती है, क्योंकि जो हरा रंग है ये प्रकृति का रंग होता है और हरा रंग अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। 16 श्रृंगार करके लोग गीत अथवा तीज के गीत गाकर उत्सव भी मनाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं और मन मोर नाच उठता है।

सावन महीने में दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो रक्षाबंधन का आता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है।

रक्षाबंधन सबसे सुखद और सार्थक त्योहारों में से एक है। ये भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है।

न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार, चाहत बहन की इतनी कि बस बना रहे प्यार। गम न कोई पास में आए, खुशियां मिले हजार, न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार। इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का समय समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: मैंने

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो विद अस्तम, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज एक और लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। इस लघु कथा के रचनाकार हैं जेके सेठी। आइए सुनते हैं ये एक नई लघु कथा जो शायद हमारे को हमारे जीवन का मूल्य समझने में सहायक देगी।

एक दिन एक लड़के ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मेरे जीवन का मूल्य क्या है। पिता ने जवाब देने की बजाय बेटे को पास में पड़े एक संदूक में से एक चमकता हुआ पत्थर दे दिया और कहा कि वो इस पत्थर को पास के बाजार में ले जाए, अगर कोई कीमत पूछता है तो बस केवल दो उंगलियां दिखा देना और कुछ भी ना कहना, बस इस पत्थर को फिर लेकर वापस आ जाना। लड़का उस पत्थर को लेकर बाजार में गया। एक महिला ने पूछा, ये पत्थर कितने का है? बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने बगीचे में लगाना चाहती हूँ। लड़के ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ दो उंगलियां ऊपर उठा दी। महिला ने कहा, 200 रुपए, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर वो लड़का पत्थर लेकर घर गया और पिता से कहा, एक महिला इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदना चाहती थी। पिता ने फिर कहा, बेटा मैं चाहता हूं अब तुम इस पत्थर को एक संग्रहालय में लेकर जाओ, अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो एक शब्द भी ना कहना और बस दो उंगलियां दिखा देना। लड़का उस पत्थर को लेकर संग्रहालय में गया और वहां के मालिक को उसे दिखाया। पत्थर देखकर वो बोले, अरे ये तो बहुत सुंदर और बहुत अजीब पत्थर है, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसे पत्थर, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। लड़के ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस दो उंगलियां ऊपर को उठा दी। आदमी ने कहा, 2000 रुपए, मैं ये कीमत देने को तैयार हूं। ये सुनकर लड़का चौंक गया, दौड़ता हुआ घर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी एक आदमी इस पत्थर को 2000 रुपए में खरीदना चाहता है। उसके पिता ने फिर कहा, अब तुम आभूषण की दुकान पर जाओ और जौहरी को यह पत्थर दिखाओ, अगर वो इसे खरीदने को कहे ना तो तब भी तुम कोई शब्द मत बोलना, बस सिर्फ दो उंगलियां दिखा देना। जौहरी ने पत्थर को एक लेंस के नीचे रखकर देखा और हैरानगी से पूछा, रहे इसकी कीमत क्या है? उस लड़के ने फिर अपनी दोनों उंगलियां ऊपर को कर दी। जौहरी ने कहा, 2 लाख रुपए, ठीक है, इस पत्थर को 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए मैं तैयार हूं। लड़के ने तब भी कुछ नहीं कहा और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आ गया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, बस अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसके पिता ने कहा, जौहरी 2 लाख रुपए में इस पत्थर को खरीदना चाहता है। पिता ने कहा, अब आखिरी बार इस पत्थर को लेकर वहां जाओ जहां बेशकीमती हीरे मिलते हों और इस पत्थर को उस दुकान के मालिक को दिखाना और बस वही करना जो सब जगह कर रहे हो। लड़का फिर से उस पत्थर को लेकर उस दुकान पर गया जहां पर कीमती हीरे और पत्थर मिलते थे। उसने मालिक को पत्थर दिखाया। जब दुकानदार ने उस पत्थर को देखा तो वो एकदम ठहर से गए। उन्होंने लाल कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रख दिया, फिर पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नीचे झुक गए और उस पत्थर को अपने सीने से लगाया। उस लड़के से पूछा, तुम ये अनमोल हीरा कहां से लाए हो? मैं अपना सब कुछ बेचने के बाद भी इस बेशकीमती हीरे को नहीं खरीद पाऊंगा, मैं तुमसे इसकी कीमत क्या पूछूं? हैरान परेशान लड़का पिता के पास लौट आया और उसने सारी बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा क्या तुम अब अपने जीवन का मूल्य जान पाए? बेटा पूरी तरह से खामोश हो गया। तब पिता ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां से आए हैं, हम कहां पैदा हुए, हमारी त्वचा का रंग क्या है, हम कितने पैसे कमाते हैं, ये मायने रखता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को कहां रखते हैं, हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि हम अपना पूरा जीवन ये सोचकर बिता दें कि इस दुनिया में हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। हो सकता है कि हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से घिरे रहें जिनके लिए हमारी कोई कीमत ही ना हो। लेकिन एक बात बताऊं, हर एक के अंदर एक हीरा छुपा हुआ होता है। हम उन लोगों को अपने जीवन में चुन सकते हैं जो हमारे अंदर के छुपे हुए हीरे को पहचानते हों। हम अपने आप को एक छोटे से बाजार में भी देख सकते हैं जहां हमारी कीमत शायद 200 रुपए हो, या फिर एक
ऐसी जगह भी देख सकते हैं जहां हम अनमोल हों। कभी आपने गौर किया कि कितने कीमती हैं आप? कितना भी पैसा दे दो, अपने शरीर का एक बूंद रक्त तक आज कोई नहीं बना पाया है, कोई किडनी नहीं बना पाया है, कोई त्वचा नहीं बना पाया है, कोई आंख नहीं बना पाया है, कोई नाक नहीं बना पाया, अरे एक उंगली तक तो नहीं बना पाया कोई। इतनी अनमोल कृतियों से हमको ईश्वर ने सुसज्जित किया है, और उसके बावजूद ही हम ये कहें कि हमारा मूल क्या है, इसे हम अपनी नासमझी कहें तो और क्या कहें। और अंत में पिता ने जानते हैं क्या कहा, ये तुम्हारे जीने का नजरिया ही बदल देगा, तुम भगवान की नजर में बहुत कीमती हो, स्वयं का आदर करो, तुम अनमोल हो, तुम बेशकीमती हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। और हां दोस्तों, आप लोग कथाएं तो सुनते रहते हैं, कभी आपके मन में भी आता होगा कि हमारी रचना को भी इस तरह से रेडियो पर प्रसारित किया जाए। तो अगर आप भी लघु कथा लिखते हैं या आपको शौक है ऐसी रचनाएं लिखने का, तो हम आपको आमंत्रण देते हैं, आप अपनी लघु कथा हमें दीजिए, हम आपके नाम के साथ आपकी लघु कथा को

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।
3: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत, कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवा की ये श्रृंखला।
4: नमस्कार। ललदेधुंद युसी वाक उते वनन वोत्सो, ये बहुत ही क्रांतिपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनशील ललवाक है। ललदेच वनन गोरन वन्नम कुने वचुन, नेब्राई दोपनम अंदरे अचुन, सुई गो लली में वाक्त वचुन, तवे हुतुम नंगे नसु। यानी गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसके कारण से मैं बाहर से अंदर आई और वही अंदर आना मेरे लिए एक क्रांति का सबब बन गया और इसलिए लला अब एक नग्न रूप में नाच रही है। इस वाक को समझना बहुत जरूरी है। गुरु ने ऐसा क्या शब्द कहा? हमारी संस्कृति में एक शब्द ब्रह्म है जो अपने में ही एक पूरा ब्रह्मांड हम मानते हैं, और ललदेत को गुरु ने कुछ ऐसा

शब्द कहा जिससे ललित के जीवन में बाहर और अंदर एक क्रांति खड़ी हो गई। जो लला बाहर थी वो लला अंदर चली गई, और जो अंदर चली तो उसे एक नई ही दुनिया दिखाई दी। यानी वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जब मुड़ी तो एक क्रांति उसके अंदर घटी। और यही लला कहती है, तवई है तुम नंगई नसुन, यानी इसलिए वो नग्न अवस्था में नाचने लगी। ये नग्न अवस्था कपड़े उतरे हुए नग्न अवस्था नहीं, ये वो नग्न अवस्था है जहां पे हम सारे फसाद, जिसके कारण से हम अंदर की दुनिया को छिपा के रखते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, ये उस फसाद को तोड़ने की बात कर रही है। वो कह रही है, मैंने वो सारी कंडीशन, सारे परसेप्शन, सारे बिलीफ, सारे आइडिया, सारे थॉट्स, सारे ऐसे जो जजमेंट्स उसके मन में थे, जिसके कारण से एक आम आदमी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसने वो सारे कंडीशंस छोड़ दिए और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो विचारहीन, विचारलेस, थॉटलेस स्टेट है। और उस थॉटलेस स्टेट से उसे वो परमात्मा दिखाई दिया, उसे वो शिव दिखाई दिया। कितनी गहरी बात ललित हमें इस वाक से कहती है। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि तो तो यो है वाक पन्ने हटे तो युजन लुक बोझन कि अथ वाकस मस्त कित सरस्वती हैकान ऐसा वह।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवा है अपने सफर पे, और दौराने सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है, फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर। इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

तुझे जाना है फलक पर अब, पर मिलोगी शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर और चाहती ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

बरसों से बस गई है उसके सीने में, जागती है तमाम रात झील के सीने पर, इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें जो मुझे न सोने देती।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

0: ilk hey dala çıkmış. İlk hey Lata Mangeşkar. İlk hey Radio Mitista. हम सफर जिंदगी का
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी अंक 4। आज की मेहमान है कवित्री सविना वर्मा। प्रस्तुत करेंगे भरत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत करता हूं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर। आज आपका ये रेडियो दोस्त भारत सोपोरी लेके आया है शेर व शायरी की महफिल, कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 4 में। उम्मीद है कि आज के आमंत्रित मेहमान आपके लिए जो कविता पाठ करेंगे उससे आप अपने जीवन के साथ जुड़ा पाएंगे, क्योंकि संघर्ष से तब के जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो अपने कविताओं से और अपने काम से आपको सराबोर करते हैं। आइए आपके साथ रूबरू करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान और स्वागत करते हैं इन पंक्तियों से। स्वागत करता हूं अतिथि देवो बाबा, कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। आज के आमंत्रित मेहमान हैं सविना वर्मा। सवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
1: भारत जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, सभी सुनने वाले को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 4 लाइनों से अपना आगाज करूंगी। मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, उदासी मेरी बस सहेली रही है, यूं तो बहुत दोस्त थे साथ अपने, मगर ये सभी तो अकेली रही है, मगर ये सभी तो अकेली रही है।
0: क्या बात। हम सवि जी और हमारी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई है। कृपया आप अपने बारे में एक मुख्तसर सा परिचय दें ताकि श्रोताओं से आप परिचित हो जाएं।
1: जी, मेरा जन्म चंडीगढ़ में ही हुआ और चंडीगढ़ में ही शिक्षा दीक्षा हुई। बहुत ही खूबसूरत माहौल हुआ करता था चंडीगढ़ का उन दिनों, आज तो बहुत ज़्यादा रश हो गया। उन दिनों बहुत शांत सड़कें हुआ करती थी, झील का किनारा हुआ करता था शांत। और चंडीगढ़ में जब हम गए तो बहुत छोटी थी मैं, करीब 2 महीने की, तो मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। बड़े संघर्षों के साथ मेरी मम्मी ने हमारी परवरिश की।
0: वैसे भी कहा जाता है कि जो माँ होती है वो हम सबको जोड़ के रखती
1: जी,
0: है।
1: आपने वही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जरूर पिताजी मेरे पूरे हो गए थे, लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हमारी माँ ने हम तक पहुँचने नहीं दी। उनके बारे में यही मैं आज भी सोचती हूँ कि वो उन्होंने कैसे किया होगा। तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हम तक नहीं पहुँचने दी, हालांकि उन्होंने, अब सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशानियाँ देखी होंगी, देखी। आज मुझे जब याद आता है उनके बारे में तो सोचती हूँ मैं कि बहुत परेशानियाँ उन्होंने झेली, हम बहुत छोटे छोटे थे।
0: सवि जी, आपका जीवन कैसा रहा है जब आप किशोर अवस्था में थे? क्या शेर व शायरी का माहौल था घर में?
1: जी, मेरे भाई उस वक्त, हालांकि वो भी बहुत छोटे थे, वो लिखा करते थे
0: जी,
1: गाया करते थे
0: जी,
1: अपनी पार्टी थी उनकी, जागरण पार्टी थी उनकी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी, जगराते किया करते थे उस वक्त वो। और बहुत ही छोटी उम्र में अंबाला में भी उन्होंने प्रोग्राम किया काका बल्ली के नाम से।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, वैसे बलराज बल्ली नाम है उनका, वैसे पहले गुरु मेरे वही हैं
0: जी।
1: खुद बहुत लिखा करते थे, बहुत अच्छा गाया करते थे। एक फिल्म आई थी दारा सिंह की, भक्ति में शक्ति
0: जी,
1: उसमें उन्होंने काम भी किया।
0: हम्म,
1: कई फिल्मी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया चंडीगढ़ में उन्होंने।
0: अच्छा।
1: तो शायद मैं उनको देखती थी और उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी
0: जी,
1: लेकिन ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इजाजत नहीं थी कुछ भी करने की। हम स्टेज शो देखा करते थे, स्टेज पे जाया करते थे, गाने सुना करते थे, प्रोग्राम्स देखा करते थे, लेकिन उसका हिस्सा बनने की इजाजत हमें नहीं थी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा।
0: तो घर में इस तरीके का माहौल था जहां संगीत भी चलता था, सब कुछ चलता था।
1: हाँ जी।
0: तो ऐसा क्या कारण था कि जो आप नहीं उसका हिस्सा बन पाए?
1: बस उस वक्त लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था।
0: अच्छा, ऐसा माना जाता था कि शायद ये लड़कियों के लिए नहीं सही नहीं है।
1: हाँ जी, मैं लिखा भी करती थी तो बस छुप छुप के लिखा करती थी, लिख के कहीं छुपा दिया, कभी वो मिला ही नहीं कहाँ गया, कभी फाड़ दिया कुछ। वो बहुत छोटी उम्र होती है और कुछ भाव मन के उमड़ घुमड़ के कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते
0: जी,
1: खासकर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते
0: जी,
1: जो कि आजकल बहुत आसान हो गया, बच्चे सब कुछ अपने माता पिता को
0: शेयर
1: इजिली बता देते हैं
0: जी।
1: उस वक्त नहीं था ऐसा माहौल, तो शायद मैं सोचती थी कि जो मैंने लिखा है वो मेरे भाई को पसंद नहीं आएगा। मेरी माँ को पसंद नहीं आएगा, मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, तो मैं छुप छुप के लिखा करती थी और कहीं छुपा दिया करती थी। कई बार कोई पूछता था क्या लिखती है, तो मैं फटाफट फाड़ दिया करती थी उसे,
0: ताकि जो आपने लिखा है वो
1: कोई और ना पढ़ ले।
0: वो और ना पढ़ ले।
1: हाँ जी, तो कई बार मैं फाड़ दिया करती थी, कभी छुपा के रख दिया, कुछ डायरियां गुम भी गई इसी वजह से। तो बस ये बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं दिखा नहीं सकती थी वो किसी को। हालांकि मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, काफी अभी कुछ ही समय पहले मेरे भाई साहब का इंतकाल हो गया, उससे कुछ समय पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम शादी से पहले कुछ लिखा करती थी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, तो क्या लिखती थी? तो मैंने कहा भाई तुम लिखने नहीं दिया करते थे क्या, अब सुनोगे? इस वक्त सुनोगे? अब मैं भी माँ बन चुकी
0: जो
1: हूँ,
0: आपने तब लिखा है।
1: जब तब लिखा था।
0: ओके
1: हाँ जी, तो उसने कहा, पता नहीं किस मूड में था वो, तो उसने बोला हाँ मैं सुनूंगा, कुछ सुना मुझे।
0: ठीक है।
1: और बड़े ही उस वक्त मुझे गौरव फील होता है इस वक्त, वो मेरा क्योंकि पहला गुरु वही था।
0: जी
1: तो जब मैंने उसे अपना सुनाया, लिखा हुआ अपनी कुछ गजलें सुनाई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अभी कहते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि वो मेरे पैर पकड़ के बहुत रोया। हालांकि मैं उससे बहुत छोटी हूं, मैं उससे कम से कम 7 साल छोटी हूं। वो मेरे पांव पकड़ के इतना रोया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तेरा लिखा हुआ उस वक्त पढ़ा नहीं, क्योंकि वो गजलें गाया करता था, लिख के खुद भी गजलें गाया करता था। वो कहने लगा कि आज उसने गाना वाना छोड़ दिया था, तो उसने कहा काश मैं ये गजलें तेरी पढ़ लेता, तो मैं गाता इसको, तो तू और मैं कहां तक पहुंच जाते। तो उस दिन बहुत रोया, बहुत रोया। तो मुझे लगा मेरा पहला अवार्ड तो मुझे यही मिल।
0: जो सबसे बड़ा
1: हाँ जी,
0: इनाम है
1: जो उन्होंने स्वीकार कर लिया इस चीज
0: जी।
1: को, तो मुझे ये लगा कि सबसे बड़ा इनाम मुझे तो ये मिल गया।
0: सभी जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कवि कवित्रियों को मैं जानता हूं, और जो आपका जीवन का सफर है वो सबसे अलग रहा है। अलग इसलिए रहा है कि जब हमारे पास कोई क्षमता होती है, कोई कैपेबिलिटी होती है,
1: जी
0: कोई कला हम में होती है, तो पेरेंट्स या जो परिवार के सदस्य है वो उसको प्रोत्साहन देते हैं।
1: जी
0: पर आपकी जो जिंदगी का सफर है कि आप कहते हैं कि आपने जो लिखा आपने फिर फाड़ दिया उसको, ताकि कोई उसको पढ़े ना,
1: हाँ जी
0: तो और कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद आपके जो भाई साहब है उनको ये महसूस हुआ कि शायद हमने कोई गलती करी है, कि हमने सवि जी को मौका नहीं दिया
1: हाँ
0: है
1: जी
0: लिखने का या
1: जी
0: बोलने का या खुल के सामने
1: हाँ
0: आने का। खैर, ये तो समय समय की बात होती है। आज आपका एक जाना पहचाना नाम है और आज आप लिखती हैं। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप कोई ऐसी कविता सुनाएं जो आपके शुरुआती दिनों की हो या जो आपने भाई साहब को सुनाई हो।
1: जी जो भाई साहब को सुनाई थी वो शायद ना सुना पाऊं मैं आपको ऐसे ही कुछ कविता पढ़ के सुनाती हूँ।
0: जी।
1: एक सीप कोई समंदर का, एक सीप कोई समंदर का, एक फूल किसी मंदर का, एक सितारा उस आसमान का, एक नजारा इस जहान का, एक झलक तेरे हुस्न की, एक महक मेरे इश्क की, एक इशारा तेरी नजरों का, एक सहारा मेरे अधरों का, एक तपिश तेरी उंगलियों की, एक कसक मेरी हथेलियों की, एक सच तेरी हाँ का, एक झूठ मेरी ना का, एक सुकून तेरी बाहों का, एक जुनून मेरी चाहों का, एक सपना तुझसे मिलने का, एक सपना संग चलने का, एक रंग तेरी होली का, एक तंज मेरी बोली का, एक वक्त तेरे आने का, एक वक्त तेरे जाने का, एक पल में जान आती है, एक पल में जान जाती है, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक कल था, एक आज है, एक अफसाना, एक राज है, एक पहेली है कवि की, एक सहेली है सवि की, एक तू एक तेरी तमन्ना, एक तेरा कहना एक मेरा सुनना,
0: क्या
1: एक
0: बात,
1: तेरा कहना एक
0: क्या
1: मेरा
0: बात है।
1: सुनना। शुक्रिया।
0: ये शुरुआती दिनों में आपने लिखा है, और एक शायर के तौर पर आप मुझे ये बताइए कि जब आप कुछ लिख के उसको फाड़ देते थे तो क्या आपको अच्छा लगता था या बुरा लगता था?
1: नहीं, बहुत दुख हुआ करता था कि ये सच्चे जज्बात होते हैं उस वक्त।
0: जी
1: आज हम कुछ बहर में लिखते हैं,
0: जी
1: कुछ किसी को पढ़ के लिखते हैं, किसी को सुन के लिखते हैं, लेकिन वो खालिस अपने जज्बात हुआ करते थे। वो किसी और उसमें कुछ मिलावट नहीं हुआ करती थी, कोई बहर नहीं हुआ करती थी, सिर्फ भाव हुआ करते थे। वो मुझे लगता है कि बहुत दुख भी हुआ था और आज भी बहुत दुख होता है सोच के कि मैंने क्या लिखा था।
0: और क्योंकि वो याद भी शायद नहीं होगा,
1: नहीं याद होते वो।
0: मुझे इसके साथ जुड़ा हुआ एक बात बताइए, एक कवि है या कवित्री है, उसको से रात वो सो रहे हैं और कुछ ख्याल आया, जग गए और कुछ ख्याल आया लिखने का, क्या उस कवि या कवित्री को सुबह तक इंतजार करना चाहिए या उसी समय उठ के वो लिखना चाहिए?
1: नहीं, इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं तो कभी कभी झाड़ू लगा रही होती थी कभी बर्तन मांज रही होती थी, कभी प्रेस कर रही होती थी
0: जी,
1: वो छोड़ के मुझे लिखना पड़ता था
0: क्योंकि वो ख्याल दोबारा
1: नहीं आता,
0: नहीं आएगा ना रुकेगा। वो
1: डांट भी पड़ती थी कि ये काम बीच में, झाड़ू अब बीच में पड़ी है, ये प्रेस कपड़ा जल गया है, तो वो छोड़ के फटाफट लिखने शुरू कर देती थी कि मैं फटाफट लिख लूं। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ।
0: क्या दिल में खुशी होती थी कि चलो अगर डांट भी पड़ गई बट जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया?
1: बिल्कुल, बहुत खुशी होती थी कि जो जज्बात दिल में आए वो कह डाले, कोई पढ़े कोई ना पढ़े, लेकिन वो मेरे पास कुछ तो महफूज है।
0: श्रोताओं को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के सफर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कभी भी हमारी जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिंदगी में। और हमें आज सवि जी से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी बातों से मुझे भी मार्गदर्शन हो रहा है और मुझे उम्मीद है जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी ये मार्गदर्शन दिख रहा होगा कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, पर जो मुश्किलों में अपनी जिंदगी की राह बनाते हैं वो शायद जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहते हैं। सवि जी से पूछते हैं हम शेर व शायरी की ओर, कब से आपने रुख किया और क्या कोई कविता या कोई शेर जो सबसे पहले आपके हिसाब से हो, क्या आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
1: जी, शायद मैं 15 या 16 बरस की होंगी तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ लिख भी सकती हूँ
0: जी।
1: तो पहले आप जानते हैं, आप कैलेंडर हुआ करते थे घर
0: जी।
1: में, शिव पार्वती का कैलेंडर, आप ये समझ लीजिए, वाल्मीकि समझ लीजिए मुझे
0: जी।
1: वाल्मीकि की तरह मैं शिव पार्वती के कैलेंडर को बड़े ध्यान से देख रही थी
0: जी।
1: पार्वती शिव की पूजा कर रही थी और भगवान शिव की जो तस्वीर थी वो बहुत प्यार से पार्वती को देख रहे थे
0: ठीक।
1: और पार्वती कोई शायद ये ऐसा कैलेंडर में था कि वो नहीं जानती थी कि शिव मुझे देख रहे हैं, वो मगन होके उनकी आराधना कर रही हैं
0: जी।
1: तो मैं बड़े ध्यान से देखती देखती देखती देखती तो मुझे ख्याल सा आया, वो कुछ इस तरह था कि ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, लगते हो कुछ परेशान, हम नहीं है बेखबर। लेकिन ये मेरा अपना विचार था
0: उस समय, जो ख्याल मन में आया हुआ आपने लिखा।
1: ये मेरी पहली दो लाइनें हैं, एकदम शुरुआती दौर की पहली दो लाइनें हैं। अब पता नहीं अच्छी थी कि बुरी थी, कह डाली लिख डाली जो अभी तक मुझे याद है।
0: याद है आपका उपनाम सवि है, इसका मायने क्या है और कब से आपने इस उपनाम को लिखना अपने नाम के साथ शुरू किया?
1: जी, वैसे देखिए सवि का तो अपना कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, सवीना, सवीना जिसको आप कह सकते हैं कि वीणा
0: जी,
1: वीणा जो सरस्वती माँ के पास होती हैं
0: जी,
1: वीणा वो और सवीना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती के नाम से जुड़ा हुआ मेरा नाम है सवीना, तो माँ सरस्वती, सरस्वती भी कह सकते हैं आप इसको।
0: यानी कि आपको सवि के नाम से भी अब जाना जाता
1: जी,
0: है?
1: जी जी जी, वो मैंने खुद ही अपने नाम को शॉर्ट कर लिया कुछ उपनाम सूझा नहीं तो अपने ही नाम को शॉर्ट कर लिया।
0: सवीना जी, क्या संगीत की, और जैसे आपने अभी बात की कि आपके घर में ही संगीत का माहौल रहा है और संगीत की तरफ आपकी कितनी रुचि है, हम चाहते हैं कि कोई अगर आपका मनपसंद गीत या गजल हो जो हम आपको भी और अपने श्रोताओं को भी सुनाएं।
1: जी, संगीत का मैं आपको बताऊं, संगीत मेरे लिए एक दवा की तरह काम करता है
0: जी,
1: खासकर पुराने गीत या गजलें, गुलाम अली जी
0: जी
1: उनकी गजलें मैं बहुत सुना करती थी, उस वक्त भी बहुत सुना करती थी और आज भी सुनती हूँ
0: जी,
1: वो मेरे लिए एक ऐसी दवा का काम कर, जितनी मर्जी टेंशन में हूँ मुझे एकदम रिलैक्स हो जाता है गजलें सुनकर, पुराने गीत सुनकर। एक गुलाम अली जी की एक अवारगी फिल्म का गीत है या गजल है, ऐसा कह सकते हैं। चमकते चांद को टूटा हुआ सितारा बना डाला, वो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे लिए लिखा हो।
0: तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप श्रोताओं के लिए इसको गुनगुना सकते हैं,
1: चलिए कोशिश करते हैं। चमकते

0: सविना जी, आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक है मोती पलकों के, इसके बारे में बताएं, श्रोता भी जानना चाहेंगे।
1: काफी समय से लिखते लिखते डायरी की शक्ल तो बन ही गई थी
0: जी।
1: काफी समय से डायरी भी सिर्फ पड़ी हुई थी। आपको मैं बता दूं कि शादी के 20 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, इतना बच्चों में परिवार में इतना व्यस्त हो गई थी मैं। उस दौरान मैं ये सोचा करती थी कि ये मैंने ही लिखा है, बिल्कुल जैसे मैं भूल ही गई थी कि मैं लिखा भी करती थी कभी। शादी करके मैं जैसे जम्मू में गई, 8-9 साल वहां रहे, मिलिटेंसी के कारण हमें यहाँ वापिस आना पड़ा। तो वो लिखा हुआ था, तो जब जो जानने वाले थे मेरे घर में, रिश्तेदार थे, कुछ दोस्त थे, तो वो धीरे धीरे करके उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम लिखा करती थी, कहा है। मैंने कहा हाँ लिखा करती थी, पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बोला कि अपनी डायरी मुझे दे दो पढ़ने के लिए
0: जी।
1: कुछ झिझक भी हुई कि कुछ तो है नहीं हाँ। उसमें बचपने का है वो, बचकाना चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने उनको वो डायरी निकाल के दे दी। कुछ बुरी सी अवस्था में भी थी, काफी सालों की से पड़ी हुई थी अलमारी में। तो वो जब डायरी निकाल के मैंने दे दी, वो चले गए, वो लखनऊ में रहते हैं। एक दो महीने के बाद जब डायरी उन्होंने मुझे लौटाई, तो ये पुस्तक के साथ लौटाई।
0: यानी उन्होंने उस डायरी को पढ़ा
1: हाँ जी,
0: और उसके बाद उसको एक पुस्तक का रूप दिया।
1: हाँ जी, हालांकि ये पुस्तक मैंने आज तक सेल नहीं की, किसी को तोहफे में दे दी, किसी को अपनी निशानी की तरह दे दी, सेल नहीं की मैंने। बहुत मेरे लिए बहुत गौरव की बात है ये कि उन्होंने, मैंने उनको एक डायरी दी थी फटी पुरानी सी, उन्होंने मुझे ये पुस्तक के रूप में उसको लौटाई। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके जरिए करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बगैर उठाया
0: और आपके लिए हाँ एक जिंदगी भर का एक ऐसा तोहफा दे दिया।
1: तोहफा जी, बिल्कुल,
0: जो आप हमेशा याद करती
1: बिल्कुल हैं। याद रखूंगी मैं इसको, मुझे ये शायद जान से भी ज्यादा प्यारी है।
0: एक कविता हो जाए इसमें से जो आपको सबसे पसंद है, और इस पुस्तक का नाम रखा गया है मोती पलकों के, तो सवि जी एक कविता हो जाए
1: जी। मैं आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी
0: जी,
1: कि उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी। उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, जहर अब कर चुका है असर जिंदगी। हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, और थोड़ी सी होती अगर जिंदगी।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, है किसी की नहीं ये अमर जिंदगी। जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, कोई करता नहीं है बसर जिंदगी।
0: जी।
1: मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, हमारे माता पिता
0: जी,
1: उनके लिए है ये शेर। मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, कट गया वो हमारा शजर जिंदगी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, खत्म लेकिन हुआ अब सफर जिंदगी। तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, रोक लेती कदम तू अगर जिंदगी।
0: बहुत खूब।
1: उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू ना ले इम्तहां इस कदर जिंदगी।
0: बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सवि जी, ये गजल सुन के मुझे एक ख्याल आ रहा है। आपने कहा कि एक दौर ऐसा आया जब आपके परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा थी, आपने माँ का रोल निभाया, तो लिखने का आपने छोड़ ही दिया था, मतलब आप लिख नहीं रही थी।
1: जी जी जी।
0: तो यानी कि जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने कभी भी समझौता नहीं किया है।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही।
0: पर ये मानता हूँ कि मैं, जो हमारे अंदर एक कला होती है या जो हमारा एक पैशन होता है, वो कभी भी एक व्यक्ति के अंदर मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। तो जब आपने अपने आप को थोड़ा सा फ्री पाया,
1: हाँ जी,
0: बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो गई, उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू कर दिया।
1: जी ये भी आप ये कहिए कि मेरे जो मुझे जानते थे कि मैं लिखा करती थी, उन्होंने ही मुझे जगाया।
0: क्या आप जो कर रही थी,
1: जो ये मतलब उन किताब जैसे छपी, तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि तू तो दोबारा लिख। मैंने शायद सोचा कि मैं नहीं लिख पाऊंगी,
0: जी जी,
1: लेकिन मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर मैं अपने आदरणीय विनय सागर जायसवाल जी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिले, और वो मुझे जब मैं ये व्हाट्सएप पे ये भेजा करती थी तो वो बहुत तारीफ किया करते थे कि बहर के बहुत करीब हो तुम, थोड़ा सा और बहर में आ जाओ। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बहर होता क्या है, वन टू देखा करती थी मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी
0: जी।
1: फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे समझाना शुरू किया, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा यहाँ करना चाहूंगी कि उन्होंने, वो मेरे दूसरे गुरु हैं,
0: यानी कि वो आपके मार्गदर्शक रहे हैं इस सफर में।
1: हाँ जी।
0: कोई और कविता आप सुनाना चाहेंगे?
1: ये देखिए मैं गा तो नहीं सकती वैसे, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी।
0: हाँ,
1: यहाँ पर
0: तरन्नुम में आप गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कला हमारे पास नहीं है। हमें बहुत खुशी होती है कि अगर हम तरन्नुम में सुने तो उसका आनंद और बढ़ जाता है।
1: जी। वफा किसी से निभा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, हथेलियां भी लगे महकने, हथेलियां भी लगे महकने, किसी का दामन सजा के देखो, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, जरा किसी को हंसा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, है कितनी बेकल हमारी आंखें, है कितनी बेकल हमारी आंखें, कभी तो पलकें उठा के देखो, सुना है सुनी है तेरी महफिल, सुना है सुनी है तेरी महफिल, तो आज मुझको बुला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, सुकून की हद जो देखनी हो, सुकून की हद जो देखनी हो, तो दर्द दिल में छुपा के देखो, हजारों हाथों की गूंज सुनना, हजारों हाथों की गूंज सुनना, गजल हमें तुम सुना के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, हर एक लम्हा भुला के देखो, तड़पते रहते हो जिनको पढ़ के, तड़पते रहते हो जिन

0: बहुत
1: देखो
0: खूब बहुत खूब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एक कवि का जो मन है वो कहाँ से कहाँ जाता है,
1: हाँ जी
0: और एक जगह बैठ के वो उस अपने मुरीद को या सुनने वालों को या चाहने वालों को पूरे विश्व का भ्रमण करा देता है। और आपने इसमें एक बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि नफरतों को मिटाना चाहिए,
1: जी
0: और अगर हमें एक अच्छा संसार और अच्छा देश, अच्छा समाज चाहिए, तो उनमें जो आपकी ये बात है और वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, हम भी यही इल्तिजा करते हैं कि जो नफरतें हैं वो कम हो जानी चाहिए, वो मिट जानी चाहिए। गीत या गजलें आप कौन सी ज्यादा पसंद करते हैं? क्या किसी खास कलाकार को आप पसंद करते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं या सुनते आ रही हैं?
1: जी, मुझे पुराने गीत ही पसंद है। गजलों के जो गायक हैं वो मुझे गुलाम अली ही पसंद है। बाकी जो फिल्मी गाने की जो मैं बात करूं तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, मैं एक किसी एक को ऐसा नहीं है कि मैं पसंद करती। जो पुराने जितने भी हैं, किशोर कुमार साहब, रफी साहब और पंकज मलिक जी, हेमंत, गीता
0: कुमार
1: दत्त, हाँ
0: जी,
1: जी, मुझे पुराने गीत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अभी हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि आपका जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, क्या चंडीगढ़ की कोई बचपन की कोई झलक आप हमारी श्रोताओं को देना चाहते हैं, ताकि हम बातों से ही उनको चंडीगढ़ में आपके उस दौर की ओर लेके जा सकें?
1: जी, चंडीगढ़ में बचपन बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा गुजरा। जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, ऐसा उस वक्त बिल्कुल नहीं था।
0: जी
1: खुले खुले मैदान, बहुत ही खुले खुले मैदान, जिसमें हम सारा सारा दिन दौड़ा भागा करते थे, झूले लगे हुए थे, झूले लिया करते थे। और आजकल तो हम अपने बच्चों को शायद अकेला झील में जाने ही नहीं देंगे घूमने के लिए, तो हम सारा सारा दिन वहां पैर लटका के बैठे रहा करते थे पानी में।
0: अच्छा
1: इतना आनंदित था हमारा बचपन, इतना आनंदमय था कि मैं आज बच्चों को जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही रहम आता है उनके ऊपर कि बड़ी बंदिशों में आजकल के बच्चे। इसी वजह से शायद पढ़ाई वढ़ाई कुछ कम ही रह गई हमारी, खेलकूद में ज्यादा समय बीता करता था। कभी कभी तो हम सारा सारा दिन घर ही नहीं आया करते थे कि घर जाएंगे तो खाना खाने के लिए रोक लेंगे, खाना भी नहीं खाना है। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत है चंडीगढ़, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतने फूल, झील का किनारा, बहुत सुंदर माहौल में मैं रही हूं और वहीं बैठ के गजलें लिखा करती थी।
0: क्या कविता लिखने में भी वहां पर कुछ ऐसा माहौल बनता था कि कुछ ख्याल आते थे जो आप
1: बहुत
0: लिख रहे हैं?
1: ज्यादा, बहुत ज्यादा फूलों की क्यारियां वहां इतनी हुआ करती थी कि मैं बस दरी बिछा के लेट जाया करती थी और खूब लिखा करती थी। अकेली जब होती थी, मुझे मदद की है वहां का माहौल लिखने के लिए।
0: यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं को सुनाएं, तो क्या कोई फिल्मी गाना भी आपको पसंद है?
1: जी, मैं चंडीगढ़ की जो भूली बिसरी यादें हैं
0: जी,
1: उन्हीं के ऊपर मुझे गीत याद आता है कि वो भूली दास्तां लोकेली याद आ गई।
0: तो बस आप गुनगुनाइए और हम फिर उस गाने की ओर चलते हैं।
1: जी, बहुत पुराना गाना है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: जी
1: वो भू

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कवित्री सवीना वर्मा सवी जी। ये कार्यक्रम का अंतिम भाग है, चर्चा हमारी सवी जी के साथ जारी है। सवी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके लिखे शब्द आपके दिल को छूते हैं? अगर हाँ, तो मुझे विश्वास है कि आपके सुनने वाले और चाहने वालों को भी ऐसे ही आभास होता होगा।
1: जो ये लिखा हुआ होता है, मैं आपको एक बात बताऊंगी, ऐसा होता है लिखने वाले के लिए जैसे हमारे बच्चे हों
0: जी।
1: आप ये नहीं कह सकते मुझे ये बच्चा पसंद है, ये बच्चा नहीं पसंद है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: मेरी अपनी मासी का किस्सा है ये, शायद वो सुने तो। उनके उस जमाने में 9 बेटियां थी, पटियाला की बात है ये। गेस्ट हाउस था उनके पास, तो वहां पर अंग्रेज आके रुके, बाहर से उस वक्त बहुत घूमने फिरने आया करते थे, तो रुके। तो उन्होंने बोला, आपके पास 9 बेटियां हैं, हम पूरे डॉक्यूमेंट बना के पूरी अपनी जजात इसके नाम लिख के एक बेटी हमें दे दो।
0: अच्छा।
1: जितनी भी हमारे पास जजात है, जितनी भी धन दौलत है, हम इसके नाम लिखेंगे, फिर हमें ये गोद दे दो। उन्होंने वो बेटी गोद नहीं दी उनको, हालांकि खुद वो इतने रिच नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे, साधारण फैमिली थी, लेकिन वो तो वही मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे ही लिखने वालों के लिए अपनी गजलें, अपनी कविताएं ऐसी होती, सभी को अपनी गजलें या मुझे प्यारी होती हैं। और हाँ, बहुत दिल के करीब, जब मैं बहुत ही मतलब इमोशनल होती हूँ, या जब मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, कि जब बहुत ज्यादा मूड होता है ना लिखने का, कि जबरदस्ती नहीं लिखती हूँ, कि अपने आप से जबरदस्ती लिखवा डालूं,
0: कुछ ख्याल आ गया,
1: कुछ ख्याल तो जब अच्छे आते हैं मैं तभी लिखती हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं लिखती मैं। तो इसी के साथ एक गजल आपको सुना देती हूँ, कि सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद बना सकते हैं, और जो रिश्ते होते हैं वो आपको भगवान की दया से ही मिलते हैं, लेकिन दोस्त आप खुद चुन सकते। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने। उफ ये पैरा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, उफ ये पैरा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, ताज भी फीका लगे इस सादगी के सामने।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। बेखुदी है या नशा है या के दीवाने हैं हम,
0: बेखुदी है
1: या नशा है या के दीवाने हैं हम, कुछ नजर आता नहीं इस रोशनी के सामने। जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने।
0: क्या बात,
1: वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने। होश तो जाकर ना आया अब तलक यारो मेरा, होश तो जाकर ना आया अब तलक यारो मेरा, आज हम मजबूर हैं बस बेसुधी के सामने। गौर फरमाइएगा। मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, तू भी आके नाच ले इस बांवरी के सामने।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने।
0: बहुत खूब, आपने सवी जी मेरे सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया है, और जो मेरा सवाल था उस सवाल के बदले आपने जो हमें ये कविता सुनाई, ये सटीक जवाब है। और मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके कविता के चाहने वाले हैं, जो हमारे श्रोता हैं, ये कविता भी उनके दिल तक पहुंची होगी। अगर जिंदगी में हर कोई साथ छोड़ दे, पर दोस्त कभी हाथ छोड़ नहीं देता, न वो साथ छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। सवी जी, जो आपने गजलें आज तक लिखी है, क्या आपकी गजल किसी गायक ने गाई है, या आने वाले दिनों में ऐसी कोई योजना है?
1: ये योजना तो कोई नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत लोग गाते रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि आपकी गजल जब हम गाते हैं तो हमें फरमाइश आती है, हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं कि सवीना जी की गजल गाइए।
0: बहुत अच्छी बात है ये
1: जी, ये मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ।
0: जी जी।
1: मेरी इच्छा है कि काश गुलाम अली जी मेरी एक गजल गा दे, लेकिन शायद ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, शायद जिंदगी में कभी उन तक पहुंचे।
0: नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर आप प्रयत्न करें तो कई बार ऐसी चीजें भी संभव होती है जो हमने सोचा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आप उनके साथ किसी न किसी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। हाँ मानते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है, शायद एक साधारण मैसेज का या किसी कारणवश वो जवाब ना दे पाए, पर मैं मानता हूँ हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, एक दिन वो जरूर आएगा। गुलाम अली साहब नहीं तो हमारे देश में बहुत अच्छे गजल गायक है, वो आपकी गजल को गाएंगे और आपके शब्दों को वो अपनी आवाज दे सके, उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कार्यक्रम के माध्यम से अपने गुरुजन को?
1: जी पहले गुरु तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा मेरे भाई साहब ही थे
0: जी,
1: और दूसरे गुरु मैंने विनय सागर जायसवाल जी का नाम लिया। मैं उन दोनों को रोज सुबह शाम जरूर एक बारी प्रणाम करती हूँ, शायद उन्हें मैंने कभी कहा नहीं उनको, लेकिन मैं इस माध्यम से आपके माध्यम से उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे, विनय सागर जी ने बहुत कुछ सिखाया, लिखा भाव अपने होते हैं लेकिन उनको कोई चमका दे पॉलिश कर दे तो वो कुछ और ही बन जाते हैं।
0: और एक रास्ता बता दें कि हाँ, किस तरीके से हम अपने उस थॉट को, उस सोच को कैसे हम पेश करें। अंत में आपसे चाहता हूँ कि हमारे देश के जो नए कवि और कवयित्रियां हैं, आप उनको अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो भी लिखना जारी रखें, एक वो मुकाम हासिल करें जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं।
1: जी मैं अपने अनुभव से तो मैं सबसे पहले तो माता पिता को यही संदेशा देना चाहूंगी कि बच्चों में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कोई ना कोई गुण जरूर होता है, हर इंसान में होता है, तो कोई भी गुण ऐसा देखें तो उसे प्रोत्साहित करें, उसे रोके नहीं, साथ खड़े हों उसका, जो शायद हमें नहीं मिला लिखने लिखाने का, सुनने सुनाने का। हमारा शायद ये सफर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बच्चे जो भी उनके अंदर कोई भी ऐसा कुछ हुनर हो तो उसे छुपाए नहीं, मेरी तरह खुल के सामने आए, एक नहीं तो कोई ना पहला कदम उठाएं तो कोई ना कोई दूसरा कदम उठाने के लिए आपका हाथ जरूर थामेगा।
0: सभी जी आपकी बात सही है, बट तब से और अब के समय में बहुत बदलाव आ चुका है। आज पेरेंट्स इस सोच से होते हैं कि अगर बच्चे में उनका कोई हुनर है, उनमें कोई काबिलियत है तो वो उसका साथ देते हैं। तो क्या कोई और आप हमें कविता सुनाना चाहेंगे जाते जाते?
1: जी एक हल्की फुल्की सी गजल मैं सुना सकती हूँ आपको। जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
0: वाह।
1: जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए, इश्क का तब बुखार होगा कम, इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए। इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए। अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, फिर ना नाता महीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: शुक्रिया। हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, वो भी तो जानशीन हो जाए। वो जहां पांव रखते हैं अपने, वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए। वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए। आज छूने से जिसको डरते हो, आज छूने से जिसको डरते हो, आदमी वो कुलीन हो जाए। और गौरे तलब शेर देखिएगा कि नीम सी दोस्ती जरूरी है,
0: नीम सी दोस्ती जरूरी है,
1: कड़वी नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए। मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, अब सभी नामचीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: अब सभी नामचीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
0: सभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हुई, आप यहाँ आए, आपने अपने कविताओं के जरिए हमारे श्रोताओं को अपने जो शब्द है, लिखे शब्द है, वो आपने पहुंचाए। और आज जैसे आपने आखिरी जो कविता पढ़ी है, और आप नामचीन तो पहले ही हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप और
2: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
3: और मैं हूं विकास शर्मा।
2: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
3: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
2: निर्माता है विकास शर्मा
3: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
2: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your reaction.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

चांदी के तारों से रातें बुनेंगे तो चमकीली होगी शहर, उजला ही उजला

0: थी दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। शब्द नेक कमाईयां ते इस शब्द नूं आवाज दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द दी वीडियो जे एस कलवाना जी ने कीती है। इस वीडियो च काम करन वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदरा जोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस कीता है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसीं इस शब्द दी वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: تُہۍ چھُو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: सदियों का सफर तय करके जो बहती आई है वो मोहब्बत की कहानी सुनाने आई है। ये वितस्ता की लहरें हैं जनाब, जो रेडियो की तरंगों से दिलों को दिलों से मिलाने आई है, दिलों को दिलों से मिलाने आई है।
1: नमस्कार, आप सभी प्यारे और अजीज श्रोताओं को एक बहुत ही खूबसूरत सुरमई दोपहर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा।
0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूं आपके दिलों की धड़कनों को महसूस करने वाला आपका हमसफर भरत सोपोरी। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना चाहता स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार शो का, जिसका नाम है आपकी फरमाइश।
1: बिल्कुल सही कहा भारत जी। वैसे भी जब भी फरमाइश की बात आती है तो लोगों को लगता है कि बस कुछ चुनिंदा गाने बजेंगे और सिलसिला थम जाएगा, लेकिन हमारे रेडियो वितस्ता का मिजाज थोड़ा अलग है ना, है ना?
0: बिल्कुल कृष्णा, हम यहाँ सिर्फ रेडियो पर आकर गाने नहीं बजाते। गाना बजाना तो एक जरिया है, असल में हम आपके दिल के जज्बातों को, आपकी दबी हुई भावनाओं को शब्दों का रूप देकर आप सभी तक पहुँचाते हैं।
1: हाँ दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इन रेडियो तरंगों के माध्यम से एक ऐसा पुल बनाना है जहाँ दूरियाँ मिट सके। हम तो बस एक जरिया है दिलों को दिलों से जोड़ने का। आपकी खुशियाँ, आपकी यादें और आपकी मोहब्बत सब कुछ सिमट कर लाता है यह शो।
0: तो बस अपने दिल के तार हमारे साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी फरमाइशों का पिटारा अब खुलने वाला है। तो चलिए सुरों के इस सुहाने सफर का आगाज करते हैं और आज की पहली फरमाइश लेते हैं। पहली फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर। सईद मसरूर सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे घर के सामने से गीत। गीत के बोल है, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत और करते हैं आगाज आज के फरमाइशी गीतों के सफर का।

0: पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंट तेजा मोड़ी अंबाला से। भेजने वाले श्रोता है बंसीलाल संधु। बंसीलाल संधु के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जजबीर सिंह संधु, वरनीत कौर संधु, पवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का गीत। गीत के बोल हैं, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, जिसे अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास अंबाला छावनी से आई है, भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनका परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जहां प्यार मिले से गीत। गीत के बोल है चले जा चले जा। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए पेश है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्ररूप नगर बब्याल अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सहरा का गीत। गीत के बोल हैं तकदीर का फसाना गाकर किसे सुनाएं, जिसे अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो पेश है उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास एक फोन कॉल के जरिए आई है और हमारे पास ये फरमाइश भेजी है संजीव कुमार राणा खेलन से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रतन से गीत, गीत के बोल है अखियां मिला के जिया भरमा के। इस गीत को आवाज दी है जोरा भाई अमाला वाली ने। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

0: लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायड़े, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहिरकर। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का गीत। गीत के बोल हैं, मेरी मोहब्बत जवा रहेगी। इसको अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी सर ने। तो दीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।
1: मेरी मोहब्बत जवा

सुनाते हैं आप सभी को एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवा, ये सुनना चाहते हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से गीत। गीत के बोल है अनहोनी को होनी कर दे। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर, किशोर कुमार और अन्य कलाकारों ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

तो चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है मेरठ से। भेजने वाले श्रोता हैं किरण और उनके साथ अन्य श्रोता हैं पिंकी, सुमन और ममता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत। गीत के बोल हैं ये शमा तो जली रोशनी के लिए। तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सभी के नाम एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है मुंबई महाराष्ट्र से भेजने वाली श्रोता है गीता, सुनीता, किरण, अमित, राजेश, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से गीत। गीत के बोल हैं ले तो आए हो सपनों के गांव में। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है बेंगलोर से। भेजने वाली श्रोता है प्रेरणा, दीनू, पिंकी और अनूप। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानी दुश्मन का गीत। गीत के बोल हैं तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, जिसे अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आपने आज का ये कार्यक्रम पहली बार सुना है और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत के लिए, हरियाणवी या पंजाबी गीत के लिए। आपको लिखना होगा गीत के बोल और अपना नाम, साथ में आप कहां से लिख रहे हैं। अगर आपके साथ आपके परिवारजन या आपके दोस्त सुनना चाहते हैं, आप उनके नाम भी स्पष्ट लिखें और हम उन सभी नामों को आपके फरमाइशी गीत के साथ बोल देंगे। आपको अपनी फरमाइश भेजनी होगी हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी, जिला यमुनानगर से। भेजे वाले श्रोता है रणधीर भांगड़, इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दूसरा आदमी से गीत। गीत के बोल है, बाहों में बाहें डालकर खेलने का मौसम आया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिली का गीत। गीत के बोल हैं आए तुम याद मुझे, जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इनकी फरमाइश का ये गीत।

आप सभी श्रोताओं के लिए ले आ रहे हैं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है खेतल राजस्थान से। भेजने वाले श्रोता है लवीना शर्मा, धीरज शर्मा, हिताक्षी शर्मा और ओम शर्मा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से गीत। गीत के बोल भी है

0: लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निशा सलमानी, इनके साथ अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का गीत। गीत के बोल हैं, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार सर ने। तो लीजिए पेश है इनकी पसंद का ये गीत। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: तो श्रोताओ, आज का कार्यक्रम अब यही हो रहा है समाप्त। आप आनंद लीजिए इस आखिरी गीत का और हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है,

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विकसता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे अशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your

रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस शहजादे पंकज उदास जी के नाम, दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है श्याम गजल।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। आज का कार्यक्रम लेखक शैलेंद्र पर आधारित है। पेश करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी श्रोताओं को मेरा यानी किडनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक खास प्रोग्राम में, जहां अल्फाज होंगे, जज्बात होंगे और शैलेंद्र के लिखे हुए गीतों की बातें होंगी। गीतकार शैलेंद्र, जो शब्दों का जादूगर था, जिनके गीत हर दिल के धड़कन बन गए। चलिए शुरू करते हैं ये आज का खास कार्यक्रम उन्हीं के लिखी हुई दो लाइनों के साथ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गीत सिर्फ अल्फाज नहीं, एक फिलॉसफी है, एक जज्बा है, जो हमें जिंदगी से प्यार करना सिखाता है। आज का प्रोग्राम इस जादूगर के नाम।

संगीत की दुनिया में जब कभी भी गीतकारों की चर्चा होती है तो शंकर लाल केसरी लाल यानी शैलेंद्र का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गाने लिखे कि उसमें कौन अच्छा और किसे नापसंद कहे समझ में नहीं आता। आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे गीतों की सुरीली तान सुनाई देती है। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, जबकि शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र का परिवार रावलपिंडी आ गया और वहीं उनका जन्म हुआ।

जन्म होते ही शैलेंद्र के पिता ने पूरे इलाके में मिठाई बंटवाई, लेकिन वक्त की चाल को कौन समझ सकता है, हालात कुछ ऐसे बने कि पूरा परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया और फिर ये तय हुआ कि रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला जाए। मथुरा में शैलेंद्र के बड़े भाई रेलवे में नौकरी किया करते थे। शैलेंद्र का बचपन मथुरा में ही बीता और स्कूली शिक्षा भी मथुरा के सरकारी स्कूल से हुई। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई वही के कॉलेज से की। पढ़ाई में शैलेंद्र शुरू से ही तेज थे। पढ़ाई के दौरान शैलेंद्र को पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने और डफली बजाने का शौक था। मथुरा में कुछ समय बिताने के बाद पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि शैलेंद्र को मुंबई की ओर रुख करना पड़ा। कुछ कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र ने मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हेल्पर की नौकरी की। संगीत और कविता का सबसे बड़ा आवारा और साधारण शब्दों के असाधारण गीतकार शैलेंद्र 1948 की उमस भरी शाम में एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहे थे कि उसी सम्मेलन में सूट बूट पहना हुआ एक शख्स उनके पास जा पहुंचा और कहा, मेरा नाम राज कपूर है।

सारे हंसे। दरअसल राजकपूर उन दिनों फिल्म आग की शूटिंग कर रही थी। शैलेंद्र की कविता सुनकर राजकपूर इतने खुश हुए कि उन्हें आग्रह किया कि वो अपनी कविता को उनके फिल्म के लिए लिखे, मगर शैलेंद्र ने राजकपूर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोले, मैं अपनी कविता का कारोबार नहीं करता, मगर वक्त की नजाकत को कौन समझ सकता है। कुछ समय बाद हालात ऐसे पनपे कि शैलेंद्र की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके पास एक फूटी कोड़ी तक भी नहीं थी। फिर शैलेंद्र राजकपूर के पास गए और 500 रुपए उधार मांगे। तब तक राजकपूर शैलेंद्र पर फिदा हो चुके थे। उन्होंने अपने फिल्म में शैलेंद्र से गीत लिखवाने का वादा किया था और इस तरह माँ के कर्ज ने उन्हें गीतकार बना दिया। मशहूर गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र जैसा कोई नहीं हुआ दूसरा, उनकी कर्जदार रहेगी दुनिया। वो एक मायने से दूसरे मायने निकालते थे गीत में।

शैलेंद्र को टाइटल सॉन्ग का निर्माता भी कहा जाता है। 1948 में फिल्म बरसात में बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले शैलेंद्र ने जीवन में अनेक ऐसे गीत लिखे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। शैलेंद्र के बारे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र। दरअसल उनका रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात को सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं था। उन्होंने बरसात के अलावा गाइड, मेरा नाम जोकर समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन 1962 में बनी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र ने बतौरी निर्देशक भी काम किया। लगभग 4 साल तक चली इस फिल्म की शूटिंग ने उन्हें कर्जदार बना दिया। दोस्तों के भरोसे शैलेंद्र निर्माता बने, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने दोस्तों के व्यवहार को देखते हुए बाद में फिल्म नहीं बनाने की कसम खाई। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म के लिए कर्ज की वजह से वो शराब की लत में डूब गए।

गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जाता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे। उनके एक ही गीत में न जाने कितने गहरे अर्थ छुपे होते थे।

शैलेंद्र तो वो गीतकार है जिन्होंने एक नन्हे शिशु का भी अपने गीतों में ख्याल करा और बड़े जान की शिशु जैसे नींद का जब वे लिखते हैं, आजा रे आनिंदिया तू, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंखों में सपने सजाओ रे निंदिया तो आई। शैलेंद्र एक समावेशी कवि है। उन्होंने तकरीबन हर उस भाव के गाने लिखे जो आम इंसान के जीवन में रोज मौजूद रहते हैं। प्यार, काम, अफसोस, दुख, रोमांच, आप जिस भाव को उठा लाए शैलेंद्र का लिखा कोई गीत आपके पास तक चलकर आ जाएगा। उनकी भाषा सरल है, व्यक्ति को शब्दों के जाल में नहीं फंसाते थे। शैलेंद्र को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिनको 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। शैलेंद्र सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।

शैलेंद्र को कलम का कलंदर कहा जाता है। इस तरह कलम का कलंदर कला के कारोबार में किनारे न लग सका। शैलेंद्र सड़क पर आ चुके थे। शब्दों का जादूगर शराब में डूब गया और शराब शैलेंद्र की जिंदगी को पीती चली गई। 13 दिसंबर की 1966 को अचानक शैलेंद्र की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहां मरना यहां करने का वादा किया, मगर ये वादा अधूरा रह गया। और अगले दिन 14 दिसंबर 1966 की मनहूस शाम ने शैलेंद्र को हम सब से छीन लिया। इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि उसी दिन राज कपूर का जन्मदिन भी था, हालांकि उनके अधूरे उस गीत को उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने शक्ल दी।

ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थ कोर्ट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी का मरण, कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए लेकिन भारतीय फिल्मों को 800 गीत दिए जो हमेशा उनकी याद दिला

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। कार्यक्रम को पेश किया आज किन्नी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट शैलेंद्र पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
3: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka.
1: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

दस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। मैं तुझको कैसे समझाऊं, तू प्यार की बातें क्या जाने, तू झांक रही माजी में, ना देख उसे, आ तुझको सुनाऊं मैं कहानी तेरी, तू अपना फसाना क्या जाने।

तो शायद हमारी मंजिल का बंटवारा नहीं हो पाता और ये सफर हमारी खोई हुई पहचान को जिंदा रखता, लेकिन यह ना हो सका और सिमट गई हमारी ये छोटी सी दुनिया इस अंधेरे कोने में, जहां रोशनी का कोई नामो निशान तक

ही खामोश और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं। माना कि इस शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो, मेरी तन्हाइयों को चीर कर, और इस खाली शब के इन अंधेरों में मैं ढूंढता हूं चांद को, जो आज

उस ओर तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ गए थे। गर्चे ये सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान इन फासलों को कम करने में हमेशा मदद करते आ रहे हैं।

क्यों न लड़खड़ाएं। इन अंधेरों में मैं तुम्हें संभाल लूं। दूर तक चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें, ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाए बीते मौसम की यादों को, जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों न इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नरम मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं को। इस सफर में फिर से साथ साथ लड़

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त रमेश

आप सुन रहे थे रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और संचालिका कृष्णा। अभी हमारे प्रसारण इस समय समाप्त होते हैं। मिलती हूँ आपसे कल सुबह 5:58 पर नए दिन, नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।